ये पूरी खबर है हिंदी में, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। दोस्तों आज के इंडियन एक्सप्रेस में देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा छपा है। इस खुलासे में बताया गया है कि HDFC ने कैसे न केवल खुलेआम नियमों और कायदों का, RBI के नियमों और कायदों का उल्लंघन किया, बल्कि अपने इन्वेस्टर का पैसा या वो लोग जो HDFC में बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का एक तरह से आप कह सकते हैं गलत इस्तेमाल किया। और न केवल गलत इस्तेमाल किया बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा लालच छुपा हुआ था। 45 करोड़ का एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला, एक छलावा देखने को मिला है, और वो इसीलिए क्योंकि बैंक को 25,000 करोड़ का लालच आया। जी हाँ, 25,000 करोड़, आसान भाषा में आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों इस खबर के मुताबिक, अगर आप इस खबर को देखें, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MSRDC को 10 MU से ज्यादा ब्याज देने के लिए करीब 45 करोड़ रुपए HDFC ने गलत तरीके से खर्च किए। तो दोस्तों अगर कहानी की तरह मैं आपको समझाऊं तो MSRDC मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये HDFC के पास गई ये कहते हुए कि हम अपना 25,000 करोड़ आपको देना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। HDFC ने कहा कि भाई हम तो सभी जितने भी बैंक होल्डर्स हैं उनको 3.5 के दर पर ब्याज देते हैं। देखिए आप भी पैसा जमा करते होंगे बैंक में, तो एक ब्याज दर होती है ना, सबको सेम ब्याज दर में मिलता है। तो अगर कोई आदमी करोड़ों कमा रहा है तो भी बैंक की ब्याज दर उसके लिए सेम होती है, और कोई आदमी बेचारा हजारों कमा रहा है तो भी उसकी ब्याज दर सेम होती है। तो HDFC ने भी यही कहा कि हमारी जो ब्याज दर है वो 3.5 है। तो ये जो MSRDC है दोस्तों, महाराष्ट्र का जो कॉर्पोरेशन है, लेकिन दोस्तों मामला 25,000 करोड़ का था, तो MSRDC ने कहा कि भाई जो दूसरे बैंक हैं वो तो मुझे 6% का ब्याज दे रहे हैं, अगर मैं आपको पैसा जब अपना देता हूं तो 25,000 करोड़ देता हूं। तो जानते दोस्तों HDFC बैंक ने क्या किया। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक HDFC बैंक एग्री हो गया, ठीक है हम आपको 6.01% का ब्याज देंगे, दुगने से भी ज्यादा, मतलब जितना HDFC बैंक बोल रहा था 3.5 उससे भी ज्यादा। और ये जो अतिरिक्त ब्याज दिया गया है ना HDFC बैंक द्वारा MSRDC को, ये गलत तरीके से दिया गया, मतलब खातों में एक तरह से जो पैसा है वो गलत तरीके से दिखाया गया। दोस्तों बैंक ने अपनी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होती है ना उसके जरिए अलग अलग वेंडर्स को अलग अलग तरीके से इसकी पेमेंट की। मतलब आप सोचिए, आपको दोस्तों टेक्निकली ये लगेगा तो क्या हो गया, बैंक की मर्जी, उसका पैसा है, बैंक के पास अपना पैसा कुछ नहीं होता। बैंक के पास जो पैसा होता है वो उसके खाता धारकों का होता है, जो आपका हमारा अकाउंट में पैसा है ना बैंक उसी को घुमाता रहता है, ऐसे ही चलता है बैंक का चक्र। तो ये जो पूरा मामला है दोस्तों सामने तब आया जब बैंक ने खुद विजिलेंस की जांच बिठा दी। अब इस पूरे मामले में RBI का क्या रोल है, हुआ क्या था दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों की बात है, HDFC बैंक जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है दोस्तों, HDFC बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था मार्च 18 को, ठीक है। और जब उनका अचानक से इस्तीफा हुआ और उसके बाद तुरंत केकी मिस्त्री ने उनका पदभार संभाल लिया, तो ये बोला गया HDFC बैंक द्वारा कि ये तो बहुत रूटीन सी प्रक्रिया है। RBI ने भी इसमें क्लीन चिट दे दी कि नहीं भाई बैंक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसके बारे में चिंता की जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है, RBI ने उस वक्त बोला था, बेसिस आर पीरियोडिकल असेसमेंट देर आर नो मटीरियल कंसर्न ऑन रिकॉर्ड एज रिगार्ड इट्स कंडक्ट और गवर्नेंस। मतलब HDFC बैंक के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसके बारे में मतलब चिंता करनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कोई गवर्नेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब खबर आई है कि एक्चुअली में ये जो इस्तीफा हुआ था ना पिछले चेयरमैन का, इस्तीफा हुआ था 18 मार्च को, और 12 मार्च को जो ऑडिट कमेटी है HDFC बैंक की, ऑडिट कमेटी ने अपने ही बैंक में चल रहे गड़बड़ झाले पर बड़ा खुलासा कर दिया। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिखा है, द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ACB, हर बैंक में एक बोर्ड होता है ना, उसने ये पाया, MD रंगनाथन की चेयरमैनशिप में पाया, उन्होंने एक फॉर्मल इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन बिठाई जिसमें ये पाया गया कि 45 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है उसको पे किया गया। मतलब आप और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो 25,000 करोड़ का ब्याज था ना वो ऐसे न देकर, मतलब ऑन पेपर तो जो ब्याज दिया गया वो उतना ही दिया गया जितना देना था, उसके अलावा जो 45 करोड़ थे वो घुमा के दिए गए। कैसे घुमा के दिए गए, दे वर रूटेड थ्रू द बैंक्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिस्गाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। मतलब बैंक ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वो पैसा रिलीज किया।

या ये कहकर कि ये जो है ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम खर्च कर रहे हैं और वो जो वेंडर्स को पैसा दिया गया वो दरअसल इससे जुड़े हुए थे संस्था से। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात, ये सब कुछ वेंडर्स को डायरेक्टली दिया गया है, मतलब HDFC बैंक के अंदर इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इतना बड़ा पैसे को आप गलत तरीके से घुमा रहे हैं और वो कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते। कोई भी बैंक किसी एक कस्टमर के लिए अपने नियम नहीं बदल सकता, RBI की साफ निर्देश है इसको लेकर। लेकिन इस बैंक ने 25,000 करोड़ के लालच के लिए कि 25,000 करोड़ हमारे पास आ जाएगा, हमारे बैंक में आ जाएगा, इतना बड़ा न केवल नियम बदला बल्कि जो पैसे को घुमाया गया वो भी गलत तरीके से घुमाया गया। दोस्तों एक्चुअली में इसी साल जब मार्च में अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा हुआ था ना, उसी वक्त ये खबरें आ रही थी कि अतानु चक्रवर्ती बैंक के अंदर कुछ हुआ है जिसको लेकर संतुष्ट नहीं थे, कहीं कोई विवाद था। लेकिन तुरंत आनंद फानन में उसमें पर्दा डाल दिया गया, नए चेयरमैन को नियुक्त कर लिया गया, RBI ने भी क्लीन चिट दे दी। और अब सामने आया है कि दरअसल अतानु चक्रवर्ती के सामने ये सब कुछ आ गया था और उन्होंने एक तरह से उसका विरोध किया, जिसके बाद उन पर दबाव बनाया गया कि वो बैंक की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते। सबसे बड़ी बात दोस्तों जानते हैं क्या, साल 2021 का मामला है, साल 2021 से ये सब कुछ चल रहा है और आज हम 2026 में आ रहे हैं। ये वो बैंक है जिसकी अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए अब अगर इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र यहां तक नहीं पहुंचते कि पूरी की पूरी ऑडिट में जो चीज सामने आई है तो भी हमको ये सब पता नहीं चलता। दोस्तों हमारे लिए चिंता की बात क्या है? अब आप कहेंगे जो भी हुआ बैंक ने किया, बैंक के अधिकारी जाने, RBI जाने। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि भाई बैंक जैसा संस्था अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसमें पैसा किसका लगा है? सरकार का पैसा तो लगा नहीं है प्राइवेट बैंक में, भाई खाताधारकों का पैसा लगा है, तो खाताधारकों के लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। दोस्तों ये जो प्राइवेट बैंक है ना, इनकी जो सर्विसेज है बड़ी महंगी है। आप इनके बैंक से अगर आपका ATM है तो एक मुश्त रकम ही आप निकाल सकते हैं, उसमें भी साफ तौर पर दिशा निर्देश होते हैं कि 2 या 3 बार ही निकाल सकते हैं, उसके बाद अगर निकालेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब इनकी सर्विसेज बहुत महंगी हैं, लेकिन आदमी ये देता है इस उम्मीद में कि भाई सरकारी बैंकों से ज्यादा प्राइवेट बैंकों में भरोसा होता है उसको। क्यों? क्योंकि हाल के सालों में सरकारी बैंकों में जो फंड था उसके बहुत गड़बड़ की खबर आई, जैसे आपको याद होगा नीरव मोदी का केस, वही तो है भाई, ये सरकारी बैंकों का पैसा लेके भागे। मेहुल चौकसी कौन लोग हैं, सरकारी बैंकों का पैसा लेके भागे हैं। तो दोस्तों आम खाताधारक को ये लगता है कि भाई जो प्राइवेट बैंक है उनमें कम से कम भरोसा है कि यहाँ कोई पैसा लेके नहीं भागेगा, यहाँ इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी, इनकी बैलेंस शीट में किसी तरह की कोई ऐसी पर्दादारी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन खुद ये मामला बताता है कि कैसे एक बैंक 25,000 करोड़ के लालच के लिए, मतलब खर्च के जरिए भुगतान कर रहा है। बैंक अपना खर्च दिखा रहा है कि हमने खर्च किया मार्केटिंग में, और वो खर्च आप किसको दे रहे हैं? वेंडर्स को दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस पूरे मामले में RBI को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस मामले में कई चीजें हुई हैं। पहला, बैंक ने नियम कायदे बदले, किसने बैंक को अधिकार दिया ऐसा करने का? दोस्तों इसके अलावा आपने अपने खातों में गलत तरीके से खर्च दिखाया, ये उल्लंघन है। इसके अलावा गलत तरीके से आपने भुगतान किया ना, आपने न केवल खर्च दिखाया बल्कि भुगतान हुआ है वेंडर्स को, बकायदा GST लगाकर भुगतान हुआ है। और बैंक की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है भाई, एक आम खाता धारक हमारे जैसे लोग जिनके पैसे हैं HDFC में, हमारा तो कोई बहुत बड़ा रकम है नहीं, उनको तो टेंशन हो गई कि भाई हम जिस बैंक में पैसा रख रहे हैं उस बैंक का क्या भरोसा, कल को ज्यादा ब्याज दर के लिए वो किसी को कह देगा 12% पे हम आपको दे रहे हैं। भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ी संस्था कह देगी हम तो 1,00,000 करोड़ रुपए देते हैं आपके बैंक को रखने के लिए, आप ब्याज दर बढ़ा दीजिए। बैंक कहेगा ठीक है आप 12% पे ले लीजिए, क्या मजाक चल रहा है? क्योंकि दोस्तों जो आम खाता धारक है वे हमारे जैसे लोग हैं, सामान्य लोग, हमारे लिए जो कमाई है हमारी तो वही है ना, तो हमको तो आप 3-3.5% की ब्याज दर पर दे रहे हैं, लेकिन जहां से आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां ब्याज दर बढ़ा दे रहे हैं। दूसरा, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है भाई, भाई कॉर्पोरेट के अंदर भी तो करप्शन है, एक तरह का ये करप्शन ही तो है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ बैंक की एंटी ब्राइबरी और गवर्नेंस पॉलिसी पर भी सवाल खड़ा करता है। हर बैंक के अंदर एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट होता है, क्या कर रहा था वो एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट? क्या इसमें बात केवल एक डिपार्टमेंट की है? दोस्तों इतना बड़ा झमेला अगर हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, क्योंकि किसी ने तो मीटिंग की होगी MSRDC से, ठीक है, मौखिक तौर पर या फिर लिखित तौर पर वादा हुआ होगा कि हम आपको इतनी ब्याज दर देंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, MSRDC ने बोला होगा। फिर वो फाइल किसी और डिपार्टमेंट में गई होगी,
है ना, फिर वो फाइल दोस्तों मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गई होगी, तो मार्केटिंग के हेड देख के

0: ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7
4: FM। टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: बीबीसी दुनिया में आ रहा यूके और यूरोप पर साइबर हमले, दिखाएंगे रिपोर्ट। डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर हो रही है दक्षिण एशियाई देशों की करेंसी, समझेंगे कैसे आम आदमी की जेब पर पड़ता है इसका असर। और दिखाएंगे पाकिस्तान में रहने वाले शीदी समुदाय का क्या है अफ्रीका से नाता। और कीनिया के सबसे बड़े मैनोस्फेयर इन्फ्लुएंसर की कहानी, कैसे महिलाओं के लिए अपमानजनक कंटेंट बनाकर बढ़ा रहे हैं अपनी कमाई। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। मध्य पूर्व के हालात एक बार फिर तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच हुए नाजुक से संघर्ष विराम के टूटने का खतरा और बढ़ गया है। अब दोनों पक्षों में बातचीत तो हो रही है, लेकिन अब तक जंग खत्म करने पर फाइनल समझौता नहीं बन पाया है। किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है इसे लेकर भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो बात अब सबके सामने है वो ये है कि अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान पर फिर से हमले किए हैं, जिसमें बंदर अब्बास में मौजूद ईरान का सैन्य ठिकाना शामिल है। यहां एक अहम बंदरगाह भी है। 3 दिनों में अमेरिका ने दूसरी बार ईरान पर हमला किया है, ये कहते हुए कि ये हमला पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए किए गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कहा, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, कि उन्होंने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां हमले किए गए हैं, लेकिन कुवैत में एयर रेड सायरन्स बजे थे। अमेरिका के नए सिरे से हमले करने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना की मंशा है कि संघर्ष विराम जारी रहे। यह सब हो रहा है जंग को खत्म करने के लिए हो रही बातचीत के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के पास अब बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचा।
1: ईरान की पूरी मंशा है कि एक डील हो जाए, अब जाकर वो डील के करीब

0: पहुंचे हैं लेकिन हम इससे संतुष्ट हैं, तो अब हम या तो उस डील के लिए राजी होंगे या फिर बस अपना काम खत्म करेंगे।
1: हमले करने की धमकी, फिर उन्होंने टालने का ऐलान, डील होने की संभावना और फिर से हमले, ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। मगर दोनों देशों के बीच समझौते पर बात कहां तक पहुंची, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल।
2: ईद की वजह से फिलहाल ये बातचीत रुक गई है, लेकिन कतर में इस हफ्ते की शुरुआत में ईरानी अधिकारी मौजूद थे और आज सुबह इसराइली मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो ये सुझाती हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौते के प्रस्ताव का ड्राफ्ट इसराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों को भेज दिया गया है ताकि वो इसे देख सकें, जो बातचीत में हुई प्रोग्रेस को दिखाता है। लेकिन खाड़ी में बीती रात हमले हुए और ये इस हफ्ते में दूसरी बार हुआ है, ये भी दिखाता है कि हालात इतनी नाजुक हैं और इसका तेल के दामों पर भी असर पड़ेगा जो एक बार फिर बढ़ रहे हैं।
1: दूसरी ओर इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला को निशाना बनाते हुए हमले जारी रखे हैं। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने खाड़ी देश ओमान को सैंक्शन लगाने की चेतावनी दी है। ये वार्निंग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के 24 घंटों के अंदर आई है जिसमें उन्होंने खाड़ी में अपने इस अहम सहयोगी देश को उड़ाने के लिए धमकी दी थी। ट्रंप ने यह रिएक्शन उन खबरों पर दिया था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने को लेकर ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। उधर दक्षिणी लेबनान में टायर शहर में और उसके आसपास इसराइल ने हमले किए। एक तरफ मिडल ईस्ट में टेंशन बरकरार है तो दूसरी तरफ यूरोप में रूस से बढ़ते खतरे को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। ब्रिटेन की स्पाई एजेंसी GCHQ की चीफ ने कहा है कि रूस लगातार साइबर अटैक कर रहा है जिसका मुकाबला करने के लिए वो पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर की रिपोर्ट।
3: हवा, समंदर, साइबर स्पेस, जंग हर मोर्चे पर जारी है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की चीफ का कहना है कि रूस लगातार क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, जैसे समंदर के नीचे बिछी उन केबल्स की जानकारी जुटाना जो ब्रिटेन के डेटा नेटवर्क को जोड़ती हैं और एनर्जी सप्लाई करती हैं। ब्रिटेन को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए निशाना बनाया जा रहा है।
2: रूस ब्रिटेन और यूरोप के खिलाफ समुद्र की गहराइयों से लेकर साइबर दुनिया तक फैली हुई अपनी हाइब्रिड एक्टिविटी तेज कर रहा है।
3: ब्रिटेन की सिग्नल और साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ यूक्रेन की मदद करने के लिए नेटो की कवायद में शामिल है। आज इस एजेंसी की बॉस ने पहली बार संबोधन दिया।
2: जब हम यूक्रेन के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं तब पुतिन जंग के मैदान में पीछे हट रहे हैं। नई खुफिया जानकारी के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद से करीब 5 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं।
4: रशियन सोल्जर्स हैव बीन किल्ड सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगन।
3: ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ की बॉस को सार्वजनिक तौर पर बहुत कम सुना गया है और शायद ये भी अहम है कि उन्होंने अपनी पहली स्पीच के लिए ब्लेचली पार्क को चुना जो जंग के दौर में कोड ब्रेक करने वालों का सेंटर हुआ करता था। लेकिन उनका संदेश बिल्कुल नया था कि अगर ब्रिटेन को आगे रहना है तो उसे AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और 21वीं सदी की दूसरी चुनौतियों में सबसे आगे रहना होगा। उन्होंने कहा कि चीन अब साइंस और टेक्नोलॉजी की महाशक्ति बन चुका है। ब्रिटेन को तेजी से बदलती तकनीकों के साथ कदम मिलाने के लिए एकेडेमिया, इंडस्ट्री और आम लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। इस बीच कल लंदन में ब्रिटेन और पोलैंड के बीच नए सुरक्षा और रक्षा समझौते का ऐलान करते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि यूरोप के सामने रूस से कोई बड़ा खतरा नहीं है। बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर की रिपोर्ट।
1: साउथ एशिया में कई देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। इसका असर ग्लोबल मार्केट से लेकर आपके आसपास की किराना दुकान तक हर चीज पर पड़ रहा है। बीबीसी की साउथ एशिया रीजनल जर्नलिज्म टीम का यह वीडियो एक्सप्लेनर बताता है कि करेंसी क्यों और कैसे कमजोर होती है और कैसे किसी देश की करेंसी की कीमत में आने वाला बदलाव वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। देखिए,
2: मान लीजिए आपने अपने परिवार के लिए एक चॉकलेट का बॉक्स 800 रुपए में खरीदा। 2 हफ्ते पहले इसकी कीमत 800 रुपए थी लेकिन अब आप इसके लिए 1200 रुपए चुका रहे हैं। एक ही ब्रांड एक सा बॉक्स, लेकिन अमेरिका में अब भी इसकी कीमत करीब $6 है। तो अब आपको ज्यादा कीमत क्यों देनी पड़ रही है? इसलिए नहीं कि चॉकलेट महंगी हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पैसों की कीमत कम हो गई है। आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है, इसलिए विदेश से कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इस बदलाव को कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी मुद्रा की कीमत में गिरावट।

0: बताना और पिछले कुछ हफ्तों में भारत और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और श्रीलंका तक पूरे दक्षिण एशियाई देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। सारे देश फ्यूल या दूसरी चीजें खरीदने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए और दुनिया भर में कारोबार के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। जब आपके देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ती है, इसके बाद घरेलू स्तर पर भी कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो ये होता कैसे है? ज्यादातर देशों में करेंसी स्थिर यानी फिक्स्ड नहीं है, इनकी वैल्यू लगातार डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलती है। किसी देश को इंपोर्ट का भुगतान करने के लिए, कर्ज चुकाने या फिर अपने देश से बाहर जा रही पूंजी को मैनेज करने के लिए डॉलर्स की जरूरत होती है। किसी देश को एक्सपोर्ट और विदेश से आने वाले रेमिटेंस के जरिए डॉलर मिलते हैं। अगर डॉलर की मांग उसकी आपूर्ति से तेज रफ्तार से बढ़ती है तो करेंसी कमजोर पड़ती है। अपनी करेंसी को गिरने देकर या फिर पॉलिसीज में बदलाव से सरकारें और किसी देश के केंद्रीय बैंक इसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हाल के समय में ग्लोबल प्रेशर ने हालात खराब कर दिए हैं। ईरान के साथ चल रही जंग ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। दक्षिण एशियाई देश जो बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किए गए तेल पर निर्भर हैं, उनके लिए इन बढ़ी कीमतों का मतलब है इस आयात के भुगतान के लिए और डॉलर चुकाना। इससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और करेंसी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ईंधन की ज्यादा कीमत, व्यापार के रास्तों में अड़चन और धीमी ग्लोबल रफ्तार, इन सब ने इस साइकिल को और मजबूत किया है। इसलिए बहुत सी अलग अलग करेंसीज एक ही वक्त में कमजोर हो रही हैं। शुरुआत में इसका असर एकदम से नहीं दिखता। अगर आप विदेश जा रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेड सामान खरीद रहे हैं तो आपको इसका असर फौरन महसूस होगा, क्योंकि आप सीधे डॉलर्स में ही भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए असर धीमा लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आवाजाही के लिए ईंधन चाहिए और इसलिए इसके दाम बढ़ने से खाने से लेकर किसी सामान तक हर चीज को एक से दूसरी जगह ले जाने की कीमत बढ़ती है। दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेज्ड फूड आइटम्स में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के मामले में भी ऐसा ही है। फिर वक्त के साथ साथ कंपनियां ये बढ़ती कीमत ग्राहकों पर डाल देती हैं और इस तरह अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने लगती है, और तब कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई डिसरप्शंस और डिमांड जैसे फैक्टर्स के साथ ही करेंसी का गिरना भी महंगाई बढ़ाने में योगदान देने लगता है, और आखिरकार रोजमर्रा का जरूरी सामान और महंगा होने लगता है। भले ही कमाई बढ़ भी जाए लेकिन अक्सर वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। मगर निर्यात करने वालों या वो जो डॉलर में कमाई कर रहे हैं, उनके लिए कमजोर होती करेंसी मददगार हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है जीवन यापन महंगा होना। लो और मिडिल इनकम फैमिलीज पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अगली बार जब आप इम्पोर्टेड चॉकलेट के एक बॉक्स के लिए ज्यादा पैसे दें तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट महंगा ना हुआ हो बल्कि आपके पैसों की कीमत घट गई हो।
1: अब बात पाकिस्तान के एक ऐसे समुदाय की जो मानता है।
2: बिल्कुल, ये पैसे जड़े ने वो इन्ने घटे नहीं, जड़ा कि डॉलर की वैल्यू घट गई जो आप समझते हैं, जिदे करके हालात जड़े इस तरह के बन गए। तो ओवरऑल खबर तो गलत जड़ियाँ इस तरीके चल दिया रहेंगे। कुछ एक लोग जड़े ने स्पैशल अफ्रीका के एक ऐसे यूट्यूबर या इंसान की स्टोरी सुनते थोड़ी जी कि भी ये की करता, किस तरह पैसे कमा
1: क्या है और लोग इससे करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। मैस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी का दिखावा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स अब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। इसकी शुरुआत पश्चिमी देशों से हुई थी मगर अब कई क्रिएटर्स इससे खूब पैसा कमा रहे हैं। बीबीसी आई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कीनिया के सबसे बड़े मैनोस्फीयर इन्फ्लुएंसर एंड्रू कीबे अपने फॉलोअर्स से पैसा कमाने के लिए महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाला और लोगों को भड़काने वाला कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें व्यूज, लाइव स्ट्रीम्स, मर्चेंडाइज और फैन इवेंट से कमाई हो रही है। आलोचकों का कहना है कि ऐसा कंटेंट महिलाओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहा है और ये असल दुनिया में भी नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए बीबीसी के ग्लोबल डिस इन्फॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डेंट जैकी वेकफील्ड की ये रिपोर्ट।
3: मिसोजिनी महिलाओं से नफरत करना नहीं है,
0: इस शब्द का मतलब यही होता है।
3: आओ देखते हैं, वो इंसान जो महिलाओं को नापसंद करता हो, उनसे नफरत करता हो या उनके खिलाफ कोई सोच बना कर रखता हो, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपके लिए भगवान जैसे हैं, हमारी पूजा करो।
0: दोनों तरफ से सम्मान क्यों ना किया जाए।
3: मुझे तुम्हारा सम्मान नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें सिर्फ एक सेक्सुअल चीज के तौर पर देखता हूँ।
0: एक असफल पादरी से कंटेंट क्रिएटर बने एंड्रू किबे ने सिर्फ टिकटॉक पर 53 करोड़ व्यूज हासिल किए, लेकिन महिलाओं के खिलाफ उनके भड़काऊ बयानों के कारण उन्हें यूट्यूब से सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह का भड़काऊ कंटेंट उन्हें पैसे कमाने में मदद करता है।
3: जब पैसे कमाने की बात आती है तो ये आसान है।
0: कीनिया के पैसे ट्रांसफर करने वाले ऐप

0: पैसा के जरिए डोनेशन मांगा जा रहा है।
1: अभी पैसे दो।
0: वो मर्चेंडाइज और पुरुषों के लिए नियमों की एक किताब भी बेचते हैं। जब वो पुरुषों के नियमों वाली अपनी किताब लेकर टूर पर निकले तो कीनिया की एक यूनिवर्सिटी में छात्र उनसे मिलने के लिए जमा हो गए।
1: आप सब कैसे हैं? क्या आप लोगों ने किताब पढ़ी है? इन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है। रूल नंबर वन, जाग जाओ।
0: इस इवेंट में पूरी तरह पुरुषों की भीड़ थी।
1: महिलाएं रात के लिए होती हैं।
0: और छात्रों ने मुझे बताया कि कैंपस में कुछ महिलाओं ने एंड्रयू किबे के आने पर आपत्ति जताई थी।
2: मैंने उनका ज्यादातर कंटेंट देखा है। ये अच्छा है कि वो पुरुषों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा बहुत विवादित है कि वो महिलाओं के लिए नेगेटिव बोलते हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो दूसरों से कुछ करने के लिए कहते हैं लेकिन खुद कुछ और करते हैं। वो शायद बार भी जाते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं उनका मनोरंजन करें। उन्हें महिलाएं पसंद हैं।
0: लेकिन एंड्रयू किबे के कंटेंट में ऐसा क्या है जो कीनिया के युवा पुरुषों को आकर्षित करता है? मैंने उनके एक फैन रायन से कीनिया में उनके एक नाइट क्लब के बाहर बात की।
3: एंड्रयू किबे मेरे लिए एक पिता जैसे हैं। मर्दानगी से लेकर खुद को आगे बढ़ाने, सोच से लेकर शारीरिक और आध्यात्मिक सब चीजों में वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं।
0: मैं ये जानना चाहती थी कि क्या किबे भी अपने फैंस के लिए ऐसा सोचते हैं?
1: मेरे कोई फैंस नहीं है।
0: तो आज आप उन लड़कों को लेकर क्या कहेंगे जो आपको देख बहुत एक्साइटेड थे?
1: ये वो मर्द हैं जो जाग रहे हैं।
4: ग्राहक
5: कस्टमर्स
0: ग्राहक, क्या आप उन्हें यही कहेंगे?
1: ये इनके शब्द हैं, मेरे नहीं।
0: तो उन लोगों का क्या जो आपके कंटेंट के लिए पैसे दे रहे हैं? क्या उनके लिए आपकी कोई वफादारी नहीं बनती?
1: अगर आप मेरा शो देखें तो लोग मुझे उन्हें अपमानित करने के लिए पैसे देते हैं। ये सबसे अजीब बात है।
0: दुनिया भर में मैनोस्फीयर इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस बढ़ाते जा रहे हैं और अग्रेसिव और नफरत भरे कॉन्टेंट से मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि इस बात को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि इसका असर युवा पुरुषों और उनके आसपास की महिलाओं पर क्या पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता जैकी वेकफील्ड की रिपोर्ट।
6: ट्रंप का जो दबदबा है वह भी इज पार्ट ऑफ इस तरह की गेम ही है, क्योंकि जिस तरीके औरतों के बारे कितना कुछ माड़ा बोलने के बावजूद भी लोग जड़े ने ट्रंप के पिछे लगे, क्योंकि ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी होंगी है, एक जगह तो शुरू होंगी है दूजे पास तक पहुंचती है, तो लोग पिछे पिछे जड़े है चले जाते हैं। तो सो आई होप भी तुम समझ पा रहे हो गए भी एक किस तरीके ये सारिया गल बात होंगे औरतों थले दिखाने वास्ते। एक किसी ने कॉन्टेंट मैं भेजा, एक लेडी दूसरी लेडी का इंटरव्यू लै रही है कि भी तू औरतों के बारे कहनी है कि भी उन्होंने थले दिखाना चाहिए है या उन्होंने एज पर रिलीजन या जड़िया चीजा करनिया चाहिए, मनुस्मृति का स्पैशल जिक्र करते हैं। तो कहती मैं सारा कुछ पढ़िया तो सब कुछ ठीक है। कहती केड़े कुरान केड़ा पुराण या जड़ी रिलीजियस बुक्स तेन ये कहती है, बट वह कहती मैं कुछ पढ़िया नहीं, बट मैं अपने व्डिया को सुनिया, व्डिया ने मैं दसिया या मेरे माँ प्यो ने दसिया। तो सो कहने का मतलब अगे की अगे गल जी निकलती जाती है, एक्चुअल सच्चाई जी कित एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। तो रीसेंट टाइम के पता नहीं तुम्हें भी नोट किया होगा कि नहीं, बट मैं जो चीज़ा नोट करता वा जिथे कोई समा सगा भी पहले लोग मल्टीकल्चरल लोगों जो अगे लिया जाता से, मॉडल्स भी जोड़े होंगे मल्टीकल्चरल होंगे, स्पैशली जो आप कोई एड्स देखते हैं या कुछ करते हैं हौली हौली करद्या करद जड़िया एड ने वह भी चेंज होंगे जा रही हैं। उस भी तू जे वाइट जोकेशन लोग जड़े ने मॉडल ज्यादा नजर आने शुरू हो गया। एक समय सदा लगता है दूसरे मॉडल आते क्यों नहीं, क्योंकि तो कल सिर्फ ब्राउन या मिनोरिटी वाले बॉर्डर मॉडल जड़े ने उ नजर आते हैं। हूँ इमीग्रेंट्स के अगेंस्ट चाहे लेडीज के अगेंस्ट जो आप गल करते हैं तो थोड़ा जहा सिस्टम जरा चेंज हो गया, जिद करके लोग जड़े है वो फिर हूँ मॉडल्स तो अगेन बैक टू जे चिट्टे कोकेशन लोग होंगे ने वह दिखा के जगह जगह उत्ते उन्होंने फोटो मॉडलिंग जी आनी शुरू हो।

0: बयान आया बीजेपी वाले का, बंगाल में सरकार हमारी है, अब पंजाब की तैयारी है। अगले दिन पंजाब च बंब धमाके हो गए। ये हुण पंजाब दे विच जिस तरह तुसीं कहिंदे सीगे, तुसीं इंट्रोडक्शन दे रहे सी आइडिया ऑफ पंजाब दा कि साडी भाईचारक सांझ नूं तोड़न वास्ते बहुत कोशिशां हो रही, ये उही तां करदे ने। बस इन्हां नूं पंजाब दे विच नफरत नहीं फैलाई जा रही, यही दुख है इन्हां नूं। बाकी बाकी पास तां पोलराइजेशन कर लेंदे ने, एक एक फिरके नूं डरा लेंदे ने, दूजे नूं मरवा लेंदे ने, फिर कहिंदे ने इह तुहानूं मारनगे, असीं तुहानूं बचा सकदे हां। पंजाब की धरती बहुत जरखेज है, मैं एक बार फिर कह दिना, पंजाब की धरती बहुत फरटाइल है, पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है। इत्थे जेड़ा भी बीज सुट दोगे थोड़ी जी सिल होनी चाहिए, उग पैंदा है। पर यह गलत फहमी ना कोई रखे कि इत्थे नफरत का बीज भी उग जूगा। नफरत का बीज इस धरती से कदे नहीं उगता। साडियां रामनौमियां सांझियां ने, साडे गुरपुरब सांझे ने, साडियां हनुमान जयंतियां सांझियां ने, साडियां ईदां शबरीदां सांझियां ने। असी एक दूजे साढ़े रविदास भगत उन्हों का प्रकाश पुरब है, सारे मनाने। सो कोशिश बीजेपी ये ना करे कि असी पंजाब दे विच कोई जातिवाद का जां धर्म का कोई बखरेवा पा के असी वोटा ले लेंगे, ये गलत फहमी चो निकल जाने।
1: सीएम साहब तुहाडे कोल गृह मंत्रालय, मैं इस करके पूछ रहा, तुहाडे कोल कोई स्पेसिफिक इनपुट है कि इस तरह का पंजाब पोलराइजेशन करने लई हो रहा, जां पोलिटिकल स्टेटमेंट आ?
0: नहीं, पोलिटिकल भी है ते नाल साडे कोल इनफॉर्मेशन भी है ना, इनफॉर्मेशन के आधार पर बोलेंगे। इधर कि बोल पाए, ये करते ने पहला इन्होंने घर इन्होंने ऑर्डर आते रहे हैं। कलाकार बुला ले, सेंटर ने पंजाब के कलाकार बुला ले, सारे प्रोड्यूसर भी सी, फिल्म वाले एक्टर भी सी, हीरो भी सी। कहिंदे बीजेपी का साथ दो, क्या दिक्कत आ रही है आपको बताइए। वो किसी ने कहता, कहिंदे सानू फरौतियां दे फोन आउंदे है, कहिंदे कोई बात नहीं आपकी सुरक्षा का प्रबंध कर देंगे। वो बिच्चों एक ने कहते कहता, कहता जी मैनू तो नहीं आया कदे। वो कहता आर यू श्योर? कहता हाँ जी। क्या नाम है आपका? ये नाम है। अगले दिन उन्होंने भी आ गया जी। फिर ये की है जी, ये की है? गैंगस्टर कितने रहते हैं जी? साबरमती जेल च रखे हुआ गैंगस्टर नामी, आप रखते ने। अच्छा, वो गृह मंत्रालय ने किया कि जे किसी ने पूछ गिछ करनी है, लॉरेंस बिश्नोई की गल करदा, जे किसी ने पूछ गिछ करनी है इतने आओ जेल च, इन्हू नाल नहीं लेके जा सकते इतों। कमाल है, सिक्योरिटी उसकी रीजन है, सिक्योरिटी रीजन वह। सो मतलब आ फिर बीजेपी का चेहरा, बीजेपी तो पहला कड़े इल्जाम नहीं लगे, गुजरात लगे नहीं, मणिपुर च की अग अग साड़ के रखता मणिपुर, कदे गए प्रधानमंत्री साहब उत्थे? वो तो अपने विदेशी दौर से फिरते रहेंगे। सो इस करके सुभा इन्हों का कल्चर है कि दो फिरकों लड़ाओ, एक फिरके मरवाओ, दूजे फिरके कहो हूँ वो फिरका तेन थोनू मारन फिरते हैं, असं थोड़ू बचा सकते हैं, असं थोड़े हूँ पितामा, असं थोड़ू भाग्य विधाता बन गए। ये पंजाब च नहीं चलना।
1: पंजाब च फरौती दियां कॉलां बीजेपी करवा रही है?
0: मैं क्या जी, बाहरले मुल्कां च भी आ रही ने, दिल्ली च भी आ रही ने, हरियाणे च भी आ रही, राजस्थान च भी आ रही, उत्थे तां इन्हां दी सरकारां ने ना। असीं तां 3,000 किलो 3,000 किलो चिट्टा जिहड़ा है वह अपना मुंद्रा पोर्ट तो फट के लिआंदा गुजरात चों, 3,001 किलो। सो आ तां इन्हां दा उत्थे गुजरात वाला जिहड़ा पोर्ट ने वो भी मतलब चिट्टे दे सब तो वड्डे सप्लायर बने हुए ने। सो इस करके शक तां होगा, सेंटर इन्हां कोले है, BSF इन्हां कोले है, क्यों नहीं यह करते फिर? ना सानू लाउण देना एंटी ड्रोन सिस्टम, ना आप लाउंदे ने। सो इह तां चाहुंदे ने कि
1: पिछले दिन ही रजिंदर कौर पठल ने बड़ा सेंसिटिव बयान दिता सी कि जदों मैं मुख्यमंत्री हुंदी सी मैनू अफसर सलाह दिंदे सी पुलिस दे, उन्होंने कहा कि अगली सरकार बनाउणी आ तां आपां बहुत सारियां जिहड़ियां घटनावां कर दिंदे आ। बाद रजिंदर कौर पठल का स्पष्टीकरण आया कि मैनू सलाह दिंदे सी मैं कीता नहीं गा, पर पंजाब च भाईचारे का भेड़ करा के सरकार बनाई जा सकदे। उह कहिंदे मैनू सलाह दिंदे सी, साबका CM गल कह रही है, कि यह सच है?
0: मैनू तां इहो जिही कोई सलाह दित्ती किसी ने जी? बड़े वड्डे वड्डे अफसर ने मेरे कोल, सियाणे अफसर ने, मैनू कदे किसी ने बंब धमाके कराउण दी ते ना ही इहो जिही कोई। असी साडी राज असी आर्टिस्ट बंदे आ, असी तां आम घरां नूं बिलोंग करदे आ, असी कोई इहो जिहियां जिहड़ियां की कह लांगे हथ कंडे वरत के असी आउंदे नहीं, असी कुंडे खड़का के जितने वाले, असी खूंडे खड़का के जितने वाले नहीं है। सो असी तो लोगों के अपना काम लेके जावांगे, अपने मैनीफेस्टो दी गरंटियां पूरियां होण दा रसीद लेके जावांगे लोगों को, सानू उम्मीद है कि लोग जिहड़े ने साडा साथ देणगे।
1: सिंह साहब तुसीं बेअदबी दे उत्ते कानून बनाया, बड़े लोगों ने उहदा स्वागत किया, अकाल तख्त साहब के जथेदार तुहाडे ते नाराज ने, अकाली दल ये कह रहा कि CM अकाल तख्त साहब नाल मत्था ला रहे ने,

0: क्या सी, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ओदा ओदो बहुत रौला पिया सी। फिर एदे तो बाद इन्हें ए भी आख्या, जी तो करता है सच बोलो, क्या करूं अब हौसला नहीं होता। इहदा दूजियां दे उत्ते तंज सी, व्यंग सी कि तुसी सारे किदां दी शायरी करदे हो, तुसी खुल के गल भी नहीं करनी चाहुंदे। कुलदीप जी, एक दौर सी जदों पाकिस्तान नवां नवां बनिया सी ते हर पासे तों भारत विच रहे मुसलमानां नूं सद्दे आउंदे सी, तुसी पाकिस्तान आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुसी पाकिस्तान आ जाओ। बाद विच उधरों सद्दे आउणे हट गए, हुण इथों धक्के मिलण लग पए, तू पाकिस्तान चला जा चला जा, तू पाकिस्तान चला जा। बशीर बदर ने दोवें दौर वेखे सी, जदों उह सद्दे आउंदे हुंदे सी ओह वी ते जदों धक्के मिलदे ओह वी। उन्हें एक शेर लिखा सी, लाहौर हो दिल्ली हो जा लाहौर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बोलोगे तो ऐसे ही रहोगे। जिथे भी है सच बोलिया ते तुहाडे नाल इहो होणी जो सच्ची होंदी पई आ। इस करके वह अपनी किस्म का शहर सी, उन्हें शहरी दे विच एक वखरा स्थान हासिल किया सी, ते सिर्फ इस करके तो खुल के गल अपनी कहिंदा सी, लुका के कहण दी आदत नहीं सी। और जिन्ने शानदार ढंग नाल जिंदगी गुजारी, ओनू अपने भारतीय होण ते भी माण सी, जिहड़ा कई मुसलमान नहीं करदे। अज हुण मैं सुनदा पिया सां, पढ़दा पिया सां सवेरे, पाकिस्तान दे इक केंद्रीय मंत्री ख्वाजा आसिफ दा बयान आया। उन्हें कहा सी अपने पाकिस्तान दे विच बच्चियां नूं गलत इतिहास पढ़ाई जांदे आ। साडे चो हर कोई यह कहिंदा मेरे वड्डे वडेरे गजनी तो आए सी, मेरे वड्डे वडेरे सऊदी अरब तो आए सी। कहिंदा बिलकुल ही झूठ ना बोलो, मेरे वड्डे वडेरे भी भारती सी, हिंदू सी ते कन्वर्ट मुसलमान होए सी। इसे तरह तुहाडे भी सारे दे इथों वाले सी, पर कोई नहीं आया। अपने बच्चों के नां नाल गजनी जोड़ के गौरी जोड़ के ते तुसी सऊदी अरब वर्गे ना बिन लादन जोड़ के ते तुसी बच्चों नूं गुमराह कर रहे हो। वह सारे यो समझ लग पे कि साडे वड्डे वडेरे उतों आए सी, असी प्योर इस तरह के अरबी लोग हैं, असी प्योर मुसलमान हैं। इतने होते भी तुसी प्योर मुसलमान बन सकते हैं, तुसी इत्थे यकीन करो। जिहड़ा ये बशीर बदर सी, ये पहला तो इस गल ते रहा कि हिंदुस्तानी विरासत ते माण करना, उहदा चले जाना सारे भारत दे साहित्यकार हलकियां च बड़ा दुख महसूस किया गया।
1: पर सब हुण पंजाब भाजपा की गल कर लेंदे आ जी। उन्होंने सबका कांग्रसी आगू बिजनेसमैन कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नज़दीकी केवल सिंह ढिल्लों नूं उन्होंने जी अपना प्रधान बना दिता। ये किस तरह की चाल है कि उन्हां तों बिना किसी होर दे नाम ते भी विचार होया जी?
0: देखो, पहली तो मैं ये दसा कि वह कहते ने दादी मोई पोती हुई टब्बर ओडे दा ओडा, इत्थे भी यह कहा जा सकदा कांग्रसी लै ते कांग्रसी बनाता। सुनील जाखड़ भी तो कांग्रसी सी, ओनू पासे करके ते साबका कांग्रसी नूं लिया के ते प्रधान बनाता। मैं कल भाजपा दे एक साबका मंत्री नाल गल हुई, तुहानूं मैं तुहानूं नवां प्रधान मिल गया, हुण तां तुसीं सिख चेहरा लैंदा सिखां दीआं वोटां लैण वास्ते। उहने अगों मैनूं आख्या, तैनूं पता कि पंजाबी दे विच इक गीतकार ने गाणा गाया गुआंढियां दी मेहरबानी है। मैं कहा हां, कहिंदे साडे विच हुण भाजपा पुराणी भाजपा थोड़ी, हुण तां गुआंढियां दी मेहरबानी है। कहिंदा जदों भाजपा नहीं सी बनी तां पुराणा नां जनसंघ हुंदा सी, साडा चोन निशान दीवा हुंदा सी। कहिंदा मेरा दादा दीवे च तेल पाउंदिआं सारी उम्र लगा रहा, उह दीवे दे चोन निशान दे उत्ते हिंदुत्व दीआं गल्लां करदा रहा। कहिंदा फिर जदों भाजपा आई ते मेरे पिता जी कमल दा फुल जिहड़ा उह निशान अपने कुरते उत्ते टंग के शान नाल फिरदे सन कि असीं हिंदुत्व दे बड़े पुजारी हां। फिर उह कहिंदा कि मैं इन्नियां मुश्किलां झलियां, चलो थोड़ा चिर बादल सरकार सानूं मंत्री बनण दा मौका भी मिल गया, पर उत्थे भी अकाली साडी बेइज्जती करदे सानूं दिन देखी सी। हुण उह कहिंदे आ वी इत्थे साडी पार्टी दे विच कांग्रसी इन्ने भारू हो गए कि आसाम विच साबका कांग्रसी हिमंत बिस्वा शर्मा उह मुख मंत्री आ, बंगाल दे विच हुण शिवेंदु अधिकारी बनाता उह साबका कांग्रसी आ, उन्हें केंद्र दे तीन चार आगुआं दे मंत्रियां दे नाल लैते उह साबका कांग्रसी आ। लेंदिया लेंदिया कहिंदा इक ते तुहाडे मुख्यमंत्री ब्यासों दा पोतरा ही आ, तीन वारी पार्लीमेंट मैंबर बनिया सी कांग्रेस ने बनिया सी, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ।

चले खंजर कटे गर्दन जुबां से ला इला निकले नमाजी वो कहलाता है जिसे दीदार होता है नमाजी वो कहलाता है

0: ग्रीक कार्पेट एम्पायर, फोन नंबर 403-510-1515, 2935-19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
1: रेडियो सुरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन शुक्रवार मई महीने की 29 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। साढ़े अज के बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दे विच 5 बजे शान अली जी प्रोग्राम पेश करनगे, 8 बजे एक विशेष गलबात आप जी लई पेश कीती जाएगी गायक सुखविंदर सिंह होरां नाल, ते 9 बजे पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी नाल असी प्रोग्राम पेश करांगे जी। ये साढ़े अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम विच खबरां ते गलबात करांगे ते नाल दी नाल ये दस दिए कि प्रोग्राम विच अज सवाल जवाब वाला सिलसिला नहीं होवेगा जी। असी कॉल्स वगैरह अज दे प्रोग्राम विच लैण तो असमर्थ हां। सो अज के प्रोग्राम विच बहुत सारिया इंट्रस्टिंग जरूरी खबर जड़िया है उन्होंने विस्थार सहित चर्चा करांगे प्रोग्राम विच अगे चल के। थोड़ी जी मौसम की गल कर लीए, इस वेले गर्म मौसम है, 27 डिग्री सैलसीयस के आस पास टैंपरेचर दसया जा रहा है। तो आने वाले दिनों की असी गल करिए चंगी बारिश होने की संभावना है। कल दिन वेले 16 डिग्री सैलसीयस, कल शाम तो थोड़ी जी ज़्यादा बारिश होगी। तो ऐतवार को जड़ा है जी 10-15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है, तो सोमवार को भी 8-10 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है, तो 10 डिग्री सैलसीयस मौसम दे विच टैंपरेचर रहेगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैलगरी दे विच कुछ तैयारियां की गई ने। बैंफ दे विच कैलगरी दे विच ते लोगों नूं सावधान रहने लई कहा गया, इहदे बारे प्रोग्राम विच अगे चल के जानकारी आप जी नाल सांझी करांगे। अज दे इस प्रोग्राम विच जिहड़ियां खबरां ते असीं चर्चा कर रहे हां उन्हां विच डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ते यूएस का ब्लॉकेड रोकिया जिहड़ा हटाया जाएगा। डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस का जिहड़ा कीता होया ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का उन्हों असी हटा रहे हैं। उन्हां दे इन्ना कहण दे नाल मार्केट विच बड़ी उथल पुथल हुई है, इहदी गल करांगे। इस तों अलावा जी कनेडा विच तकनीकी तौर ते आर्थिक मदवाड़ा आ चुका है। पिछले 2 सालों के असी सुनते आ रहे हैं कि कनेडा दे विच रिसेशन 2 बारी कनेडा दे विच आउंदा आउंदा रुकिया, ते मदवाड़ा जिहड़ा है जी इस वेले तकनीकी तौर पर इकनोमिक ग्रोथ के घटन कारण इस नूं तकनीकी तौर पर कहा जा सकता है कि आर्थिक मदवाड़े का दौर है। पीयर पोलियाव विरोधी धिर दे आगू कहिंदे ने कि इस आर्थिक मदवाड़े ले मार्क कारनी दियां इकनोमिक नीतियां जिम्मेवार ने।

के लिया सकते हो, समा देखने की लड़ नहीं है। मदर इंडिया रेस्टोरेंट का फोन नंबर 403-461-6161। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के है, जिथे सिर्फ $7 के पासपोर्ट फोटो दो आप जी करके दी जाएगियां। फोन नंबर है 403-947-0060 403-947-0060। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। इस तो अलावा इन्होंने को फैमिली फोटो, बच्चों की फोटो तो पोर्ट्रेट भी तुम करवा सकते हो जी। रेडियो सरसंगम 94.7 FM ते ब्रेक तो बाद स्वागत करते हैं जब सब सुन वाले एक बार फिर प्रोग्राम विच साडे कोल 15 मिनट का लगभग समा बचा ते 5 बजे शान अली जी प्रोग्राम पेश करनगे। 8 बजे एक विशेष गलबात इंटरव्यू प्रसिद्ध गायक सुखविंदर होरां नाल पेश की जाएगी, तो उस तो बाद 9 बजे पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम होगा। यह साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज दे प्रोग्राम विच सवाल जवाब नहीं होगा जी, ये शेयर नहीं कर रहे, माफी चाहते इस वास्ते। त्याओ अगलियां खबरां वल चलते हैं। कैनेडा पोस्ट वलों पहले क्वार्टर दे विच 205 मिलियन घाटे का जिहड़ा बजट है वह उहदे बारे दस्या गया। कैनेडा पोस्ट जो साल का बिलियनज़ डॉलर घाटिया विच जा रहा कई सालों तो, इस पहले क्वार्टर दे विच मीडिया रिलीज विच फैडरल क्राउन कारपोरेशन ने यह खुलासा किया कि क्वार्टर वन लॉस साडा जिहड़ा है वह काफ़ी है, तो 2025 के घाटे नालों भी ज़्यादा। कैनेडा पोस्ट ने उत्थे 2025 41 मिलियन टैक्स तो पहला वह घाटा उदों दिखाया सी, इस बार 164 मिलियन का वाधा हो गया तो 205 टोटल हो गया। कारपोरेशन का रेवेन्यू जिहड़ा वह भी घटिया जो कि 181 मिलियन घट गया जां 14% घट गया पहले क्वार्टर दे विच। 2025 का जिन्ना क्वार्टर से उस नालों 14% डाउन है। कैनेडा पोस्ट ने कहा कि जिहड़ा इस दी कारपोरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है इसनूं नवां रूप कोई दिता जाना यह जरूरी है। सो फैडरल सरकार इसनूं चलदा भी रखना चाहुंदी है, क्राउन कारपोरेशन है पर चल नहीं रही, तो मार कारनी वार वार कह चुके ने कि बहुत बड़ा साढ़े लिए घाटे का सौदा है। हुण कल्ले कम्यूनिटी मेलबॉक्स बंद करन नाल ते मसला हल नहीं होगा। कैनेडा पोस्ट ने यह कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ी है यह असी जरूरी है साढ़े लिए, तो कई सालों के विच ये होगी, जिस विच कैनेडा पोस्ट की बारगेनिंग एजेंट्स ते फैडरल सरकार के हिस्सेदार जिहड़े ने जी वो इस विच कम करनगे। ते टैक्सपेयर का फंड वरतण नालों इस दे विच जिहड़े कैश इंजैक्शन सरकार लाउंदी आ उहदे नालों कोई होर नीति जिहड़ी आ अपनाउणी पवेगी। 2025 दे विच कैनेडा पोस्ट नूं रीपेएबल फैडरल गवर्नमेंट कैश मिलिया सी 1.03 बिलियन दा, तां कि अपनी वित्तीय हालत नूं थोड़ा बहुत सुधार कर सकण ते दिवालीएपन तों बचिया जा सके। पर कैनेडा पोस्ट नूं जिहड़ा इह पैसे दित्ते उह वी खूह च ही पै जापदे ने, ते इस साल मई के शुरू के फैडरल गवर्नमेंट ने 673 मिलियन सी कैनेडा पोस्ट नूं चलदा रखण लई होर देण दी गल कीती है। सो कैनेडा पोस्ट नूं लगातार गफे जा रहे हैं, तो बनेगा की इस संस्था का, तो कैनेडा वालों नूं चिट्ठियां ये जिहड़ियां जरूरी कैनेडा पोस्ट के थ्रू आउंदियां ने वो कमी आ जाए करनगियां, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी। दुनिया भर के जिहड़े होर मॉडल ने जिवें रॉयल मेल यूके जां होर जिथे दे सीगे जी, उन्हां ते निगाह मारी जा रही है कि वह किवें कम चलाउंदे सी ते हुण किवें चल रहे हैं। सो की यह संस्था बच सकेगी, की फैडरल सरकार कोल कोई इसका बदल है, ये बहुत वड्डे सवाल है जी। अलबर्टा दे विच सैपरेशन दे मुद्दे ते रेफरेंडम होवेगा, यह गल ते हुण जाहिर हो गई है, ते सरकार नूं इन्नी काली है कि उन्होंने 60,000 बैलेट काउंटर जिहड़े ने जिन्हां ने गिणती करनी है बैलेट की, 60,000 बंदे हायर करन दा काम शुरू करता, टैंपरेरी ये पोजिशन होणगियां। इन्हां दे विच एजेंसी ने कहा कि 60,000 जां इस तों वध इलैक्शन ऑफिसिस दे विच हैंड काउंट करन लई वोटां लई जिहड़ा प्रोविंशल ला दे तहत जिहड़ा है जो कि पोलिंग स्टेशन बंद होण दे 48 घंटे दे विच होनी चाहीदी है, उहदे लई असीं बंदिआं दी हायरिंग कर रहे हां। सारियां पोजिशन पेड होणगियां, ते 16 साल तो उपर की उम्र वाले तो उन्हों का क्रिमिनल चैक रैकड जोड़ा करके जोड़ा है उन्होंने वोटों की गिणती में लाया जाएगा। इलैक्शन अलबर्टा ने कहा कि हायरिंग जी जून 8 तो शुरू हो रही है, तो अलबर्टा वाले अगे बढ़ने। प्रैमियर डैनी

107.7 FM कैलगरी का मल्टीकल्चरल स्टेशन 5:04 में फ्राइडे May 29th, 2026 साल का 149वां दिन है और 216 दिन इस साल के बाकी हैं. It is 28 degrees right now. बहुत ही खूबसूरत समर लाइक डे है. ब्लू स्काइज है, हवा ज्यादा तेज नहीं है, आइडियल मौसम है कैंपिंग के लिए. अगर आप कैंपिंग के नहीं गए तो घर के बैकयार्ड में छोटी मोटी हरकत कर सकते हैं. प्रोग्राम है संगीत स्टूडियो बीइंग ब्रॉट टू यू

सुर संगम रेडियो में हुशान अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल एंड गुड फ्राइडे इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पंजाबी में एक लाइन बोलते हैं सियाने कहते हैं, अच्छा उर्दू हिंदी में कहते हैं बुजुर्ग कहते थे, बुजुर्ग फरमाते थे। इंग्लिश में कहते हैं अ वाइज मैन वंस सेड। इसका मतलब एक ही होता है, किसी ना किसी अकलमंद इंसान ने यह बात की होती है, लिखी होती है, और वो इतनी आम और रेलिवेंट होती है कि हम सब उसे यूज करने लगते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। अ वाइज मैन वंस सेड, बी डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, बीज डोंट वेस्ट देयर टाइम टू एक्सप्लेनिंग टू फ्लाइज दैट हनी इज बेटर देन पूप और शिट। यानी शहद की मक्खियां बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती आम मक्खियों को यह बताने के लिए कि शहद पूप से या शिट से ज्यादा बेहतर होता है। प्रोग्राम में संगीत आज के प्रोग्राम की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, और आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का एक पुराने खूबसूरत ट्रेंडी और नॉस्टैल्जिक गाने से, ओरिजिनली संग बाय मलकाए तरन्नुम नूरजहां। पर ये गाना एक नई सिंगर ने गा रखा है।

0: call for free delivery.
1: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम.
0: Sorry, take ours only.
2: 403-612-6100.

0: जरूर चेक करो। तसल्ली बख्श ते तेज सर्विस, लंबे समय तो भरोसेयोग सेवावां लई जाने जांदे हन। अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिद्धू 4036074208 अकाल फॉरन एक्सचेंज।
1: पूरा साल हो गया गाना सुनदी नूं, बस कैलगरी च कार लैण दीआं फीलिंग आई लई जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है। उहनां दे आउण तो पहलां मैनूं कार चाहीदा है।
2: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्हां दी सलाह नाल हुण घर इक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ।
1: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल इक वार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-6164-45 4036162445।
3: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
4: की होया?
3: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
4: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
5: वी कैन चेंज योर मूड विद आवर यूनिक एबिलिटी टू एंटरटेन, एजुकेट एंड इन्फॉर्म व्हाइल यू ड्राइविंग, वर्किंग, वॉकिंग एट होम or away from home. Keep listening. Ahem waqiat aur khabrein, sports, khoobsurat ashar and your participation. Stay tuned. We will be right back.
6: Welcome back. Program Sangeet 94.7 FM. Aaj ke topic of the week mein hai Alberta separation referendum. Aur ek aapko bahut khoobsurat gaane ki taraf leke jana hai kyunki break kafi lamba tha, to mera khayal hai thoda sa entertainment hona chahiye. And uske baad jab hum gaane se wapas aayenge to is topic of the week pe jo ki very important and relevant hai, is pe baat karenge ki ho to raha hai, ab isme questions kya hain, kitna kharcha aayega aur iska impact kya hoga. Kafi detail baat cheet hogi, to mere saath rahiyega. Right now ek aur purane gaane ki taraf aapko leke jana chahunga.

तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं हमारी और हमसे जो पिछली जनरेशन है उनकी। अच्छा, इस तरह के किस्से अब होते नहीं हैं, ये लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पन्नू, शीरी फरहाद, कभी कभी तो ये लगता है ये सारी किताबी बातें। ज़ाहिर है जिस तरह नावल लिखे जाते हैं, नावल्स के कैरेक्टर होते हैं, इस तरह से ये लोक दास्तानें बनाई गई हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। पर फिर ये लगता है कि हो सकता है कि हुआ हो, क्योंकि इस ज़माने में कोई ज़्यादा बिल्स आते नहीं थे, इंटरनेट होता नहीं था, स्मार्ट

0: फोन्स होते नहीं थे, जिंदगी में कोई रंगीनी नहीं थी, और अगर कभी इश्क मोहब्बत हो जाए तो वही सबसे बड़ी रंगीनी होती थी। और दूसरी चीज ये है कि ये जितनी दास्तानें हैं ऑन द लाइटर नोट, ये सब इसलिए भी बहुत पॉपुलर और बड़ी और डीप और इंटेंस हैं कि इनकी शादियां नहीं हुई। प्रोग्राम में संगीत स्टूडियो में हूं शान।
1: दिल को छू जाने वाली मासी की कानों में रस घोलती आवाज, संगीत स्टूडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर पॉपुलर ट्यून्स राइट हियर इन संगीत स्टूडियो।
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
5: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757।
4: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
6: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
7: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
4: 4
8: Sangeet washes away the dust of everyday life.
9: Love in search of words.
0: वेलकम बैक 94.7 एफएम पर संगीत में, मेरा और आपका साथ है। 5 बज के हो गए हैं ऑलमोस्ट 26 मिनट, और मई 29 है आज। साल का 149वां दिन, 216 दिन साल के बाकी हैं। 28 डिग्री है, इस सीजन का हाईएस्ट है। नॉर्मली हमारे यहाँ 28 जाके जुलाई अगस्त में होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि 10-11 दिन पहले यहाँ पर टिका के, जिसे कहते हैं पंजाबी में, स्नो हुई, और उसकी वजह से हमारा स्प्रिंग भी एक हफ्ता लेट हो गया। लेकिन अब ये जो पिछले खूबसूरत 3-4-5 दिन जा रहे हैं, ब्लू स्काईज, कोई ज्यादा हवा नहीं, बहुत ज्यादा बादल नहीं, परफेक्ट कैंपिंग मोड का मौसम, या शहर में एंजॉय करने का, या बैकयार्ड एंजॉय करने का मौसम है। तो इसलिए एंजॉय इट एज लॉन्ग एज यू कैन और एज लॉन्ग एज दिस लास्ट। प्रोग्राम है संगीत। हम टॉपिक ऑफ द वीक में आज जो आपसे बात करनी है, सुनी सुनाई लोगों चीज़ें तो आपको ज़ाहिर इधर उधर से पता होंगी, जो बिजी लोग होते हैं, जिनको जो न्यूज़ सावी हैं उनको ज़रा ज़्यादा डिटेल से पता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा बिजी हैं, जिनको नहीं मौका लगता, जो सिर्फ हेडलाइन सुनते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि चीज़ों में हो क्या रहा है। और यही वो नुक्ता है जिस पे स्मार्ट या क्लेवर पॉलिटिशियंस बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इलेक्शंस में भी। उनको ये पता होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा होता है। वो सिर्फ हेडलाइंस के साथ प्ले करते हैं, एक नैरेटिव पुश करते हैं, और लोग उसमें आ जाते हैं और फिर वोट देते हैं। बहुत बार फिर पछताते भी हैं, बहुत बार नहीं भी पछताते। अब अल्बर्टा सेपरेशन को लेके फाइनल हो गई, डेट भी आपको पता है कि अक्टूबर 19 है, और अब ये जो रेफरेंडम है वो भी फाइनल।

फाइनल है, क्लियर है, होना है. जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसके डिसाइड कर लिए गए हैं. तो अब इसमें कोई किसी तरह से एम्बिग्यूटी, कोई अभाम बाकी नहीं है. वोटर्स विल बी आस्ड वेदर अल्बर्टा शुड रिमेन इन कैनेडा और बिगिन द लीगल प्रोसेस टूवर्ड अ फ्यूचर बाइंडिंग वोट ऑन सेपरेशन. यानी दो ऑप्शन होंगे आपके पास. पहला ये कि कनाडा में रहना चाहिए अल्बर्टा को एज ए सूबा. दूसरा ये है कि फ्यूचर में एक रेफरेंडम होना चाहिए जिसमें ये डिसाइड हो, जो एक्चुअल वोट हो, कि अल्बर्टा को अलग होना है, सेपरेट होना है. अच्छा, दिस इज नॉट द फाइनल वोट, क्योंकि ये तो सिर्फ इस बात का रेफरेंडम है कि रेफरेंडम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्यूचर में. अब जो डिफरेंट तरह का डेटा है, कोई ये कहते हैं 8% सपोर्ट है सेपरेशन को, कुछ डेटा आता है वो कहते हैं जी 18-19% है, कुछ आता जी कि अगर सारी इंक्लूड कर दिए जाए, यानी लोग जो डाई हार्ड हैं, जो सेपरेशन चाहते हैं, कुछ ये कहते हैं नहीं ऑटवा को सिर्फ हमने डराना है. वो पंजाबी की मिसाल है कि मारे नालों डराया चंगा, कि अगर डराना है तो ये एक है. लेकिन कुछ ये भी है कि 61% अल्बर्टन जो है वो स्ट्रांगली कैनेडा के साथ रहना चाहते हैं. 35% ऐसे हैं जो कहते हैं कि सेपरेट हो जाना चाहिए. लेकिन उन 35% में भी 11% ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि डराने वराने के लिए ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल रेफरेंडम हुआ तो शायद उनका वोट डिफरेंट हो. अब ये रेफरेंडम 19 को होने जा रहा है. इस पे खर्चा आएगा $40 मिलियन के करीब, उससे ज्यादा होगा. 20 मिलियन बजट में रखा गया था और अल्बर्टा इलेक्शन अल्बर्टा के लिए, और कुछ और पैसे दिए जाएंगे. तो $40 से $50 मिलियन के दरमियान इस रेफरेंडम पे खर्च आएगा. आप एक तरफ ये सोचते हैं कि स्कूलों के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, हेल्थ केयर में ट्रबल है. अभी फिर एक डेथ हुई है एडमिंटन में, उससे पहले भी एक इमरजेंसी में वेट करते हुए डेथ हुई थी. वेट टाइम जो है वो थ्रू द रूफ है. और यूटिलिटी बिल्स बहुत हाई हैं. जो यहाँ पर स्पेशल सपोर्ट मिलती है उसके इश्यूज हैं. अच्छा, ऐसे में आप 50-60 मिलियन जो है वो खर्च कर रहे हैं कैसे रेफरेंडम पे, कि ये पूछा जाए कि फ्यूचर में एक और रेफरेंडम हो कि ना हो. ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही. लेकिन पॉलिटिशियंस, एक चीज़ कही जाती है कि जो पॉलिटिशियन होता है ना, वंस अ पॉलिटिशियन इज ऑलवेज अ पॉलिटिशियन. और उसको आप दुनिया की 10 चीज़ें सिखा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट पॉलिटिशियंस विल नेवर थिंक बियॉन्ड देयर वोट्स. उनको जहां से लगता है कि हमारी पावर रहेगी, इक्तदार रहेगा, हम हुकूमत में रहेंगे, वो हर वो काम करते हैं, चाहे वो मॉरली सही हो ना हो, प्रैक्टिकली सही हो ना हो, मटेरियली सही हो कि ना हो, रैशनली सही हो कि ना हो, वो नेशनलिज्म के खिलाफ हो या फेवर में हो. ये यूनिवर्सल एक है कि पॉलिटिशियंस को अपना वोटों से पीछे ज्यादा सोचने में मजबूर कर नहीं सकते. अच्छा जी, ये मॉन्ट्रियल क्यूबेक में जो हुआ था रेफरेंडम, उसके बाद ये पहला कैनेडा का कोई सूबा हो गया कि जो इस तरफ जिसने रास्ता लिया है. अब अलग अलग इसके बारे में जो नुकसान आते हैं, जो फायदों में तो मुझे पता नहीं. नुकसान ये है कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है किसी गांव में, किसी शहर, किसी मुल्क में, वहां पर जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कभी नहीं आता. बड़ा इन्वेस्टर तो छोड़ दें, छोटा इन्वेस्टर नहीं आता. लेटली पिछले 3 महीने से, जब से ये रेफरेंडम का सिलसिला चला है, इंटरप्रोविंशियल माइग्रेशन टू अल्बर्टा बिल्कुल हाल्ट हो गई है. यानी बीसी से, ओंटेरियो से, क्यूबेक से जो लोग यहां मूव होते थे वो नहीं मूव हो रहे. उसकी रीजन ये है कि कोई आता था यहां बिजनेस करने पैसे लेके, कि वहां टोरंटो में घर बेचा 2 मिलियन का और यहां पर आके 5-6 लाख का कैश पे घर लिया और 1.5 मिलियन का कोई बिजनेस कर लिया, जॉबें क्रिएट की, टैक्स दिया, इकोनॉमी में हेल्प की. वो लोग नहीं आते कि यार पता नहीं अल्बर्टा का फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं वो सेपरेट हो जाएगा, पता नहीं वो कंट्री बन जाएगा, पता नहीं वो 51st state बन जाएगा अमेरिका की. सो दिस अनसर्टेनिटी किल्स द इकोनॉमी. ठीक है, स्मॉल बिजनेस जिसने बिलियंस करने हैं बड़ी कॉरपोरेशन ने, वो तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती जब फ्यूचर ही नहीं पता कि क्या ये अल्बर्टा का हिस्सा होगा, क्या ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा जिसकी एक्सेसी ओशन तक नहीं होगी, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से भेजेगा बीसी की तरफ इधर उधर. जाहिर इंटरनेशनल बॉर्डर बनने के बाद कुछ ही समझते हैं कि अगर अमेरिका के साथ मिल गया तो फिर क्या होगा. अमेरिका में जिस स्टेट्स में ऑयल निकलता है, अब उनके हालात देख लें, वो ये शिकवा करते हैं कि सारा पैसा वॉशिंगटन ले जाता है. आप पढ़ के देखें कि ऑयल रिच स्टेट्स कहती हैं कि उनका सारा पैसा वॉशिंगटन ले जाता है, जैसे यहां कहा जाता है कि ऑटवा ले जाता है. तो इसका मतलब है कि फिर आप वही है कि आगे खाई, क्या कहते हैं, पीछे कुआं आगे खाई. अच्छा, अब जैसे कि इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि इफ यू मीन हाउ मच अ सेपरेशन इटसेल्फ कुड कॉस्ट अल्बर्टा, तो इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि $130 बिलियन 10 साल में GDP को इसका नुकसान होगा, इंक्लूडिंग जो पिछले कुछ अरसे से हो रहा है. यानी जो इन्वेस्टमेंट यहां पर आनी थी वो नहीं आएगी, रुक जाएगी, वेट करेंगे लोग, वेट एंड सी स्ट्रेटजी होना शुरू हो जाएगी.
ठीक है. उसके अलावा अल्बर्टा फेडरेशन ऑफ

नेवी तो खैर क्या होगी, वो चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए. ये सारी चीज़ें कोई बच्चों का खेल नहीं है. एंड द कॉस्ट विल बी इन मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर. ठीक है जी, ये है सिचुएशन. और अब इसको लेके जो दो तरह का इम्पैक्ट है, एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो कहते हैं कि ऑटवा के साथ हमारे मसाइल तो हैं, लेकिन जब भी कभी डिसएग्रीमेंट होता है तो उसका मतलब मुल्क तोड़ना नहीं होता. उसका मतलब ये होता है कि आप नेगोशिएट करें, फाइट करें अपने राइट्स. और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे जो ग्रेवेंसेज हैं वो मेड अप भी हैं, उन्हें बहुत फ्लेयर किया हुआ है, उन्हें बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई हुई हैं. मसलन बहुत बार आप सुनते हैं कि ओ क्यूबिक वालों को इतने पैसे मिलते हैं, ओ माय गॉड अल्बर्टा इतने पैसे देता है, इतने नहीं लेता. आप ज़रा जो रिलायबल वेबसाइट्स हैं उन पर जाके पढ़िए कि कौन सा प्रोविंस कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑटवा को और उसको वापस कितना मिलता है. अल्बर्टा ओंटेरियो के कहीं आसपास भी नहीं है. और तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर यूज की जाती हैं. हम जो न्यू कैनेडियंस हैं, हमारे लिए और भी मुश्किल रास्ता है. वो इसलिए कि हम बहुत सारे ओवरसीज लोग अपने मुल्कों को छोड़ के इसलिए आए हैं कि एक स्ट्रांग, खूबसूरत, मल्टीकल्चरल, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज कैनेडा, एक बड़ा डिवर्स कंट्री कैनेडा, हम उसमें आए हैं. अब अगर यहां पर एक सूबा, फॉर एग्जाम्पल अल्बर्टा, टूट के लैंडलॉक्ड एक कंट्री बन जाता है, तो वो जो आपका ड्रीम था being in the largest, the second largest country in the world, the most multicultural country in the world, the full of opportunities country in the world, diverse economy, khubsurti, landscape, wo sara kahan chala jayega? Zahir hai kuch bhi nahi bachega. Teesra ye ki especially hum jo desi south asian hai, humne ye taqseem wagaira itni dekhi hai na, 47 ki aur phir 71 ki aur phir ye aur phir wo, aur bade dukh, बड़ी तकलीफें, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है उसके साथ. तो हमें तो वैसे डर लगता है इस तरह की, ये जो अलहदगी की बातें और सेपरेशन की बातें और इंडिपेंडेंस की बातें होती हैं ना, वो हम ट्रामेटाइज हो जाते हैं देसी लोग. मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं पर्सनली समझता हूं कि इस मुल्क में जब आप 5-10 साल रह जाते हैं, 15 साल एक लिमिट गिनी जाती है न्यू कैनेडियन की, अगर आपको 15 साल से ज़्यादा इस मुल्क में हो गए हो तो यू नॉट न्यू कैनेडियन एनी मोर बाई डेफिनेशन. फिर आपको इस मुल्क से प्यार हो जाता है, फिर आपको उतनी मोहब्बत हो जाती है जैसे उस मुल्क से थी जहां से आप छोड़ के आए हैं. इसकी जीत में, इसकी हार में आपको दुख होता है. इसकी इकोनॉमी ऊपर जाती है, आपको खुशी होती है. यहाँ क्राइम्स नीचे जाते हैं, आपको खुशी होती है. यहाँ अच्छा पॉलिटिकल लीडर आता है, आपको खुशी होती है. सो यू बिकम पार्ट ऑफ कैनेडियन मोज़ेक, कि जहां आप एक यहां की जो बलवतनी है, जो देशभक्ति है, जो पैट्रियटिज्म है, उस पे आपको फख्र होने लगता है. सो इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन द हुक. ये नुकसान है. दूसरा ये कि जो यूनिटी है एज कनेडियन, एज अल्बर्टन, वो जाहिर है डिवीजन है. नेबर, ये नेबर जो है ना, ये प्रो है तो ये नेबर अगेंस्ट है. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रेग्जिट के बारे में ब्रिटेन में एक बहुत ही ज्यादा कैंपेन चलाई गई कि बस ब्रिटेन के हर मसले की जड़ जो है ना वो EU है, और ब्रिटेन में लाइट अगर चली जाए, पानी ना हो, क्राइम ज्यादा हो, दुनिया की वहां पर कोई चीज है ना ब्रेग्जिट की वजह से. और उसे इतना मल्टीप्लाई किया गया, इतना नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जब ब्रेग्जिट हो गया तो आज 10-11 साल गुजरने के बावजूद भी कंप्लीट मेस है. क्राइम्स पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इमिग्रेशन के मसाइल वैसे के वैसे हैं, और UK वीक हो गया है, इज मच वीकर कंट्री देन जब वो EU का हिस्सा था. तो बेसिकली वो हेड टेबल पे होता था हमेशा UK में, EU में, क्योंकि बड़ा और इम्पोर्टेंट मुल्क था पॉपुलेशन के एतबार से, तो हेड टेबल पे होता था, उसकी पावर थी, उसकी सेइंग थी और से थी उसकी. अच्छा, वो सारा कुछ खत्म हो गया. एंड आज अब अगर आप UK में, इस वक्त रिसेंटली एक सर्वे वहां पर हुआ था जिसमें कहा गया था कि ब्रेग्जिट क्यों, ब्रेग्जिट सही हुआ कि गलत हुआ, जो लोग उस वक्त ओवरवेलमिंगली कह रहे थे कि होना चाहिए, बस अलग हो जाएं जी, बस दीवारें खड़ी कर दें, अब उनमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज कहती है कि हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें पता नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमें ये लगता था कि हमारे हर मसले की जड़ ये है, अब हमें ये लगा कि हम गलत थे और ये ब्रेग्जिट होने से हम कमज़ोर हुए हैं, वीक हुए हैं, और कंटिन्यूसली मैस अभी तक चल रही है. तो इसलिए ये जो अल्बर्टा ये रेफरेंडम फॉर रेफरेंडम है अक्टूबर 19 को, जिसपे 40-50 मिलियन डॉलर खर्चा आएगा, जिसमें दो सवाल हैं कि कैनेडा को, अल्बर्टा को कैनेडा का हिस्सा एज ए प्रोविंस रहना चाहिए या उसको लीगल प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए ताकि फाइनल रेफरेंडम हो सके अलहदगी का. तो आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें. ये जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, इधर उधर का झूठा सच्चा डेटा है, इसको देख के ना करें, खुद पढ़ें, खुद सर्च करें. जो खुद ब खुद

चीजें आपकी फीड में आए ना वो कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होती. जो आप सर्च करके देखते हैं ना वो ऑथेंटिक होती है. फॉर एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्या है तो ढूंढिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, स्ट्रेंथ वाइज क्या होगा और मसाइल क्या होंगे वो अगर आप पढ़ें. जो फीड में आपके पुश की जा रही होती है ना चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं होती. वो ऐसे ही जैसे आप स्टोर में कुछ लेने और गए थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें और लेके आ गए बिकॉज दे वर डिजाइंड इन अ वे, दे वर शेल्फ्ड इन अ वे कि आपको ये लगा कि मुझे इनकी ज़रूरत है, आप लेके आ जाते हैं. तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन आपकी फीड में खुद ब खुद आ रही होती है उसे पुश किया जा रहा होता है, पीछे कहीं ना कहीं एजेंडा नैरेटिव कुछ ना कुछ पैसा लगा होता है. इसलिए उन चीज़ों की बजाय खुद जब आप ढूंढते हैं गूगल करके चैट जीपीटी से यहां से वहां से जहां से आप दिल करें इंस्टीट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से जाके सीआरए की वेबसाइट पे जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो ऑथेंटिक है वहां की वेबसाइट से तो फिर आपको ये लगता है कि एक्चुअल डाटा है क्या. प्रोग्राम है संगीत, मैं हूं शान. संगीत स्टूडियो

0: even more. A lot more.
1: संगीत में ऐसा करते हैं कि आपको एक और खूबसूरत से गाने की तरफ लेके जाना चाहता हूं. बेटा आप में से बहुत सारे लोगों ने यह गाना नहीं सुना होगा. ओरिजिनली ये पाकिस्तान की पुरानी फोक सिंगर ने गाया था, लेकिन आजकल ये बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे नए सिंगर्स की आवाज में.

ओरिजिनली ये गाना बुशरा सादिक ने गाया था 1981 में 1981 में और ये जो गाना आपने सुना ये नाजिया कमल यंग सिंगर है उनकी आवाज में जिन्होंने रीडू किया म्यूजिक भी थोड़ा सा चेंज किया वर्डिंग लिरिक्स बिल्कुल

0: आप सुन रहे हैं संगी स्टूडियो 94.7 FM पर यू वीकली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन इन हिट देसी म्यूजिक यू फ्राइडे ड्राइव होम शो May 29, 2026 इट इज 28 डिग्री राइट नाउ और 5:50 एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं
1: Your choice, your voice. Zara Vakri type ki presentation. Full of masti, full of information. Program is being presented by Sean. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
2: Apne ghar da dooja na aaya school te Canada ch ghar khareedna ek vaddi chunauti.

ये जो ट्रेड है अगर अगले तीन सालों में कनाडा रिसोर्स बेस्ड कंट्री इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, मीट है, दालें हैं, ऑयल है, गैस है, इस तरह की चीज़ें, चाइना उसके लिए बहुत हंग्री है, उसको ज़रूरत है, कनाडा को बड़ा कस्टमर चाहिए. इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्री इतने तेज़ी से इकोनॉमी में जो डाइवर्सिफिकेशन है और ट्रेड का जो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा एक पेज पे हैं कि ये कहना, और ये किसी आम आदमी का कहना नहीं है, नंबर थर्ड होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द कंट्री इन चाइना, जो मिनिस्टर वैंग जी, वो ये कहते हैं कि इट कुड पोटेंशियली डबल बाय 2030. ये बहुत ही अच्छी बात है कनाडा के लिए. एनी न्यूज़ जिसमें आपको ये लगता है कि कनाडा मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, फार ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, उधर जो है इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूरा, जहाँ जहाँ अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई कर सकता है वो इस कंट्री के लिए उतना ही अच्छा है, इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, पर कैपिटा जीडीपी के लिए, नेशनल जीडीपी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और सबसे बढ़ के हमारा जो नेबर हमें हर वक्त बुली करता रहता है उससे बचने के लिए. सो दिस इज रियली रियली अ गुड न्यूज. अच्छा, एक खबर और ये है कि कैनेडा पोस्ट रिपोर्टेडली 205 मिलियन लॉस फॉर द ओपनिंग मंथ ऑफ 2026. अब ये कनाडा पोस्ट जो है ना, ये अब एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है, लोग अनॉय होने लगे कि आए दिन उसकी स्ट्राइक और कोई ना कोई उसका मसला, कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है बेसिकली. अब हुआ क्या है कि जो पहला महीना है 26 का, उसमें $205 मिलियन का उसे लॉस हुआ है एज ए यूनियनाइज्ड वर्कर्स कंटिन्यू वोटिंग ऑन ए टेंटेटिव लेबर एग्रीमेंट. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्राइवेट सेक्टर के हम खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सीरियसली क्राउन कॉरपोरेशन के उसके अंदर, कभी कभी आपको ये लगता है कि इसे अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो शायद ये ठीक हो जाए. मैं बहुत बार ये सोचता हूँ एज ए बिजनेस का स्टूडेंट के तौर पर कि बाकी जो दुनिया में क्राउन कॉरपोरेशन हैं, अमेरिका में, यूके में और कंट्रीज में हैं, वहाँ पर रॉयल पोस्ट है, उनको स्टडी करने की जरूरत है कि क्यों सिर्फ इसका ही हमारा इतना सीरियस इश्यू है कि हर, अभी ये देखिएगा कि अब ये नवंबर दिसंबर जब आएगा, जब हाईएस्ट कनाडा पोस्ट का यूज बढ़ेगा, तो उन दिनों में ये स्ट्राइक की फिर बात आना शुरू हो जाएगी कि स्ट्राइक कर रहे हैं. जब भी लोगों को डिमांड होती है, बढ़ जाती है, जब भी जरूरत ज्यादा होती है, ये स्ट्राइक के नोटिसेज और इस तरह की चीजें आपको खबरों में आना नजर शुरू हो जाती है. और दूसरा ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी हो तो क्या मिलियंस ऑफ लॉस हो और मैनेजमेंट कुछ ना करे, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है. सो दिस इज हैपनिंग अगेन. अच्छा, उसके बाद क्या है जी, एक और खबर आपकी नजर करते हैं कि जो मेजर इंटरनेशनल ऑटो थेफ्ट कनाडा में हो रहा था, कनेडियन जो पुलिस है उसने रिकवर किए हैं 40 स्टोलन व्हीकल्स, उनकी वर्थ है $3 मिलियन से ज्यादा, इंक्लूडिंग कार्स ट्रेस्ड शिपिंग राउट्स रीचिंग गाना, स्पेन एंड बहामास. अथॉरिटीज कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हाईलाइट करती है कि ये जो ग्लोबल नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये कितना बड़ा है. और मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये हाईलाइट करती है, ये भी हाईलाइट करती है कि हमारी जो अथॉरिटीज, जिनका ये काम है इनको रोकना, उनका काम कितना बुरा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यू, इसमें कोई फर्क आना, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा. ठीक है, एक न्यूज़ ये थी और टाइम बहुत थोड़ा सा है, आपसे मुझे इजाज़त भी लेनी है. मेरा ख्याल है कि दो एक मिनट मिला मिलू के होंगे. एक लास्ट प्रेजेंटेशन आपकी नज़र करना चाहता हूँ और उसके बाद प्रोग्राम में फिर आपसे लेते हैं इजाज़त.

इसके साथ ही आपसे लेता हूँ इजाजत. आई विश ऑल ऑफ यू लव पीस रिस्पेक्ट एंड लवस्ता. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे. फिर आएंगे घर. खुदा लाया.